एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावै है सब त्यावै तुध जी, हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी। हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा।

अनियस गोविंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तं पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया।

तन मन थीव हरे पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाही तेरे छड़ जाहे भौजल विखमस गाह गुरसबदी पार पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सैनो कृपाल संभाले साह साहे बिरथा कोई ना जाए जे आवे तुद आहे श्लोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुरनाओ सतगुर सेती रतिया दरगह पाइय ठाओ कहु नानक कृपा करे जिसनो एह वथ दे जग मह उत्तम काढ़िया विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन गुर की पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनहुना विसारियन साध जना कै संग पवजल तारियन

प्राण पूजा करे, सिख प्राण सहित सेवा करनी शुरू कर दे। भाई गुरदास साहब कहणगे ताही गुर सर्व निदान दान देत है। सतगुरु साहब दुनिया का हरेक खजाना, हरेक धन पदार्थ, हरेक दुनिया का जिहड़ा है वह जीवन दे विच जिहनू आपां नौ निदां दे रूप विच खजानियां दा जिक्र करदे महाराज कहण लगे वह प्राप्ति। ध्यान देना सतगुरु साहब जी दे व्याख्याकार भाई गुरदास साहब कहणगे सतगुर सेवा पाए प्राण पूजा करे। सिख जिहनू सतगुरु की सेवा पा जाए तो प्राणा तक भी परवाह न करे, सेवा कर दे। सर्व निदान अगर भाग ले बुलावे, सतगुरु जी कहिंदे असल विच उहदे अगे सारे दे सारे निदान लिव ला के बैठ जांदे। उहदे घर विच पदार्थां की कमी कोई नहीं रहिंदी, हरेक तरह की दात, हरेक तरह की वस्त उहनां दे जीवन विच रहिंदी, हरेक तरह की दात उन्हां दे जीवन विच सतगुरु साहब जी दे दर तों प्राप्त हुंदी। इस करके सतगुरु साहब महाराज जी की पावन बाणी विचों वेखीए ते दातार कहणगे कि जीवन विच गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए। इह सेवा की सब तो वड्डी प्राप्ति है। दातार कहणगे सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। जिदन आपां सेवा चित ला के करनी शुरू करदे हां, एकाग्र हो के करनी शुरू करांगे ते उत्थे फिर महाराज जी जिक्र करदे हां कहिंदे सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमे विचों जाए। सतगुरु जी कहिंदे मन की इच्छा अनुसार दात प्राप्त होवेगी, कमी किसे गल दी नहीं। मन चिंदिया फल पावना हौमे विच्चों जाए, अंदर दी हौमे अंदर दी हंगता जड़ी है वो जीवन विच्चों अंदरों बिल्कुल खत्म हो जाती, अंदर दी हौमे दी विचार जड़ी है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती। इस करके सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने ये जीवन दे विच जड़ा है सब तो उत्तम अवस्था जड़ी है वो साडे सन्मुख दसी। महाराज कहणगे इस जीवन विच जिस धन को चार कुंट उठतावै सो धन हर सेवा ते पावै। निरंकार की सेवा उनू याद कीतिआं उहदे हाजरी विच रहिआं, जीवन विच उहदी बनाई हुई कायनात उहदी बनाई हुई कुदरत की सेवा करदिआं महाराज कहणगे जिहदा समां बतीत हुंदा होवे जीवन विच कमी किसे गल दी नहीं है, किसे भी तरह की दात की कमी कोई नहीं। पर यह जीवन विच है कि सेवा करनी सतगुरु साहब महाराज कहन लगे सब तो औखी है। सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए, सब तो पहला महाराज कहने जिहड़ी सेवा है वह गाखड़ी है, औखी है, बिखम है। ते नाल ही सतगुरु ने कहा सतगुरु की सेवा गाखड़ी सिर दीजै आप गवाए, सिर देना पएगा। सिर देने का अर्थ की है, अपनी हौमे का सिर वढ़ना पएगा, हंगता अपना अहंकार पिछे छड़ के आना पएगा। सिर दीजै आप गवाए, सतगुरु कहिंदे अपना आपा भाव गवाना पएगा। गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर सेवा ते सुख उपजे। गुर के गृह सेवक जो रहे फिर एक काम जरूर करे, गुर की आज्ञा मन में सहै आपस को कर कश न जनावै, हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। महाराज कहने कि करे कोई काम ना, सिर्फ इको गल जीवन विच कर ले कि सतगुरु साहब जी दे प्रथाए समर्पण भाव की इच्छा अपने जीवन विच जरूर रखे। ये सेवा दे विचों जिहड़ी वड्डी प्राप्ति है साडे जीवन अंदर। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का यह सब तो वड्डा उपदेश साडे निज वास्ते। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे कि जिदन असी ये सेवा भावना सहित सतगुरु जी दे दर ते समर्पण होने की इच्छा रखांगे फिर जीवन विच वड्डी प्राप्ति है। हुण उदाहरण देन लगा, आप जी ने उस उदाहरण नूं जरूर सरवण करना कि जिहदे करके इत्थों तक सतगुरु साहब जी दे व्याख्याकार भाई गुरदास साहब जी ने कथन किया। वो कहन लगे जैसी मात पिता केरी सेवा सरवण कीनी, सिख बिरलोई गुर सेवा ठहरा बई। भाई गुरदास साहब कहन लगे जिवें मात

मैं, कोई न जाने तुमरा अंत चेते। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुमते,

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुरु ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय।

एक जी कछ कही न जाई, सोडी शिष्ट सगल तारन को, अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। गुरु अमरदास की कथ कथा है, एक जी कछ कही न जाई, सोडी शिष्ट सगल

0: संग विवे
1: नमस्तंग जन्मे नमस्तंग सुबन में
0: नमो सर्व गौने नमो सर्व पौन
1: नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे
0: नमो काल काले नमस्त दयाले
1: नमस्तंग भरने नमस्तंग भरने
0: नमस्तंग जदारव नमस्तंग कृतारव।

0: सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
1: अधोदर्दन गण ओग हर्ता
0: परम परम परमेश्वर पोच पाल
1: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालन
0: अचेदी अपेदी अनामंग अकाम
1: समस्तोपराजी सम

0: मरण बहीन
1: चक्र बक्र फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन
0: जोदय के बिखे जग जाप ही जे जाप
1: आ देव नाथ मूरत थाप्यो सबे जे थाप
0: परम रूप नीत मूरत पूरन पुरख पार
1: सर्व विश्वर च्यो से अनुभव गणन पंजन हार
0: कालहीन कलास जुगत काल पुरख देश
1: तरम ताम सो परम रहत भूत अलग पेश
0: अंग राग न रंग जाके जात्मात्मा नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुट दायक काम
0: आप रूपमेक अनुस्तत एक पुरख दूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत
0: अंगहीन अपंग

0: चतुर्दाने चतुर्चक्रजाने
1: चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रपति
0: चतुर्चक्रपाले चतुर्चक्रकाले
1: चतुर्चक्रपासे चतुर्चक्रवासे
0: चतुर्चक्रमाने।

0: आकाश रूपे ने बात बिभूते
1: अनंगी अनामित्र बंगी तरकामे
0: बंगी से रूपे से पंगी अनुपे
1: न पुत्र न पुत्र न सुत्र न मित्र
0: न ताते न माते न जाते न पाते
1: सागम सरिखे मितो अमीखे
0: सदैवन प्रभा है अजय है अजय भगवती शांत प्रसाद की जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है।

अनाद कर कर प्रणाम चित चरण नाम अंजज गात अनरंज पात आठ डीठ तरम अत डीठ करम।

0: श्री चंद अजय अले अबे अबे
1: अबू अजू अनास कास
0: अकाल अगंज अपंज अलक अपाख
1: अकाल दयाल लेख पेख
0: अनाम अकाम अगा।

0: चारत पेदा जाको पेर न पावत पेदा महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चीनत नैतिव तुमरा लखा न जाय पसारा कैबिल सजा प्रथम संसारा स्वरूप से अंबव सगल मलेश करो रणकाता
1: परे तिनके दुष्ट कुतुब मरे
0: पुरख चवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब तारे रक्षा होता है सब काला दुष्ट अरिष्टरे
1: तत्काला
0: मोसब हो सके न कोई
1: एक बार बारह काल फास्ते
0: जिनर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट रोते रहा
1: चौपाई
0: कृपा तुम्हरी कर मैना कहो सब दोए बखानियो

0: अनंत एक्युम काल सदगुर प्रसाद अनंत पया मेरी माए सदगुरु मैं पाया
1: सदगुरता पाया सहज सिद्धि मन मजियां वधाइयां
0: राग रतन परवार परियां सबद गावन आईयां
1: सब दूत गावो हरि केरा मन जनी वसाया
0: कहे नानक आनंद होआ।

0: मन वसावे,
1: नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने रे।
0: नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे,
1: साचा नाम मेरा आधारो,
0: साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया,
1: कर सांत सुख मने वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया।
0: सदा कुर्बान किता गुरु विट्टो जिस दिया ए वडियाइया,
1: कहे नानक सुनो संतो सबत रोपे आरो, साचा नाम मेरा आधारो।
0: वाजे पन सबद कार सबागे, कार सबागे सबद वाजे, कला चितकर तारिया,
1: पंच दूत दूत वास कीते काल कंटक मारिया।
0: करम पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे,
1: कहे नानक कह सुबो आदित घर अनद वाचे।
0: साची लिवे बिन दे निमानी लिवे बाजो क्या करे वेचारिया,
1: तुद बात समृत कोए नाही कृपा कर बनवारिया,
0: एस नौ हो थाओ नाही सबद लाख सवारिया।
1: कहे नानक लिवे बाजो क्या करे वेचारिया,
0: अनन अनन सबको कहे अनन गुरु ते जाने,
1: जाने अनन सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया।
0: हर कृपा किल विकटे ज्ञान अंजन सारे,
1: अंदरो जिनका मोह टूटा तनका सबद सचे सवारिया।
0: नानक यह आनंद है आनंद गुरु ते जाने,
1: बाबा जिसनु दे सोई जन पावे,
0: पावे तो सो जन दे जिसनु होर क्या करे वेचारे।
1: एक परम भूल है फिरैदे जिसका नाम लाग सवारिया,
0: गुरु प्रसादी मन पया निर्मल जिन्ना पाणा पावे।
1: कहे नानक जिस दे प्यारे सोई जन पावे,
0: आवो संत प्यारे कथ की करे कहानी,
1: करे कहानी कथ केरी कित द्वारे पाईए।
0: तन मन तन सब सौप गुरु को हुक्म मनिए पाईए,
1: हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची वाणी।
0: कहे नानक सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी,
1: ए मन चंचला चतराई किने ना पाया,
0: चतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया।
1: ए माया मोनी जिने परम भुलाया,
0: माया ते मोनी तिने कीती जिन ठगोली पाईया।
1: कुर्बान किता तिसे विटो जिनो मीठा लाया,
0: कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया।
1: ए मन प्यारे तू सदा सत संभाले,
2: जो देखता चले नाही तेरे नाल,
1: साथ तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चितलाई है।
2: ऐसा कम भूले ना कीचे जित अंत पछताई,
1: सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
2: कहे नानक मन प्यारे तू सदा सत संभाले,
1: अगम गोचरा तेरा अंत।

चक्र चेहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहि जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसियाए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अर सौह कुर सौह चटीए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दे साहो जिस पास बहिठिया सोही है सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी जयत श्री